पावन तुदनौ पवन पाणी बैसंतर गावै राजा धर्म द्वारे गावन तुदनौ चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म बिचारे गावन तुदनौ ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे गावन तुदनौ इंद्र इंद्रासन बैठे देवते आदर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित

वड्डा आखै सब कोए, केवड़ वड्डा डीठा होए, कीमत पाए न कहया जाए। कहने वाले तेरे रहे समाए, वड्डे मेरे साहेबा, गहर गंभीरा गुणी गहीरा। कोए न जाने तेरा किता केवड़ चीरा, रहाओ सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई।

जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परदास। राग गुजरी महला पंजवां, काहे रे मन चित वह उद्दम। जा आहर हर जीव परया, शैल पत्थर मह जंतु उपाय।

तिन कवन खलावे कवन चुगावे। मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिद्धान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया। राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा। सब त्या वह सब त्या वह तुद जी हर सच्चे सिर

है जो सेवह तुद जी, जन नानक तिन कुरबाना। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी, से जन जुग मह सुखवासी। से मुकत भय जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जम की फासी।

अमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड़ अवर न कोई।

जिसनु कृपा करहे तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लाधा मन मुख गवाया, तुदे आप विछोड़या आप मिलाया।

मेल जिसनो तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया।

मूरख मुगदा जन्म भया प्रणवत नानक तिन की सरणा जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवां।

शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबेउ बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबे तुम काब हो, आप हाथ दै मुहे बचाव हो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबे करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिए, सब बैरन कौवाज संघरिए। पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। हू जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करे हो।

हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो।

आप सवारी, शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा। जब आकर्ष करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तार, आप अपनी बूजू चार, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम।

बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कहि कूपा, अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर कैठा, सिगरी सृष्टि दिखाए अचम भाव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भाव। आब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो बार सिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुझ तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे।

ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहरिहु, ताके ताप तनक मह हरिहु। रिद्ध सिद्ध कर मुँह सब होई, दुष्ट चाह चवै सकै न कोई।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वादा।

तेरे सब किछ है, जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसिया, वाजी शब्द कनेरे।

पौड़ी तिथै तू समरथ जिथै कोई नाहे उथै तेरी रख अग्नि उदर माहे सुन कै जम के दूत नाए तिरे छड़ जाहे पौजल विखम सगाहो गुर सब दी पार पाहे जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे कल मह ए

0: जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू
1: ठाकुर तुम पैर दास, जियो पिंड सब तेरे। तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख कन्हे।

अंत सगल सामग्री तुम रह सूतर तुम ते हो ईसु आज्ञा तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाह। श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे होई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरों श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौन द्यावे ताए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अणे डिठ कीता तिना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दित्ते बंद बंद कटाए खोपड़ियां लुभाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां ना चराए गुरुद्वारां दी सेवा दी कुर्बानियां कीतियां धर्म निहारिया सिखी के साथ सत्संग निभाई तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी साहिब बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चितावन का सदका सर्ब सुख होए जहां जहां खालसा जी। साहिब तह तह रश्यारियायत देखते फतेह बिरद की पाए पंथ की जी श्री साहब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखानु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बंगे जुग हो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत का रखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाण्यो के माण नितान्यो के तान न्योटियां दी ओर सच्चे पिता वाहिगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ दोए कर जोड़ करूं अरदास तुत पावेता आने रास। महाराज जी आप जी दे चरणा अरदास बेनती। महाराज जी आप जी दी महान बख्शिश होई शामा दे दीवाना दी आरंभता होई संगती रूप विच संपूर्ण सुखमणी साहब जी दे जाप होए ने संध्या भगता समा जान के सोदै रह साहब दे पाठ हे। महाराज जी उस समुची सेवा निभाउंदिया बाणी पढ़दिया आप जी दी सेवा संभाल करदिया होइया बेअंत बेअंत फुलां बख्श देणियां जी। अगे वाते समत बख्शिश करने शुद्ध गुरबाणी गायन करन दा बालू तों बख्शिश करना जी बाणी दा भाव आईया संगतां दे हिरदिआं तों वसाउणा आईया संगतां दी हाजरी दर प्रवान करनी सभना दीआं तिल फुल पिटावां दर प्रवान करनियां सभना नूं दरों करो नामदान गुरसिखी जीवन बख्शिश करना चढ़दी कला बख्शिश करनी कृपा करनी महाराज जी दुखां कलेशां रोगां दा नाश करना जी सुखां दा प्रकाश करना देशा विदेशा विच रखिया बख्शिश करनी महाराज जीओ। बेअंत संगतां दूर दुराडे बैठे घरां विच लाइव गुरबाणी ते जाप सरवण करनियां हन जाप सरवण करदे आप जी दा धन्नवाद करदे आं बेअंत मैं गुरु घर वास्ते

महाराज मेहरकरण सच्चे पातशाह जी दी पावन गोद विच बैठ के पागां वालियां रूहां करमां वालियां रूहां इंज कह लो जिन्हां ते महाराज निहाल होवे ओही सतगुरां दी पावन गोद विच बैंदा है। कल्ला बैंदा ही नहीं स्वासां नूं सफला रसना नाल अपने मुख नूं पवित्र जिस बोलत मुख होए पवित्र। सच्चे पातशाह कह रहे ने उंज ते जवान सारा सारा दिन बोलदी है पर जदों कोई कीर्तन विच बाणी विच जुड़ जाए मन करके ते फिर रसना भी भागा वाली। सब तो सौखा तरीका महाराज ने साडी चोली पाया नामे कहे त्रिलोचना मुक्ते राम समान हाथ पाओ कर काम सब चीत निरंजन। ध्यान मन महाराज दे चरणां नाल जोड़ी रखो सवास सफला हो जाएगी जीवन यात्रा सफली हो जाए। गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी का जिन्ना भी शुक्र करिए थोड़ा है। आओ पंथ दे बड़े प्यारे गुरु दे साजे होए निवाजे होए भाई साहब जी ज्ञानी जसवीर सिंह जी खुश दिल उन्होंने जी आया नूं दसरियां वालों समूह प्रबंधक कमेटी वालों वो आप जी महाराज जी के चरणा नाल जोड़नगे। असीस देव फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

जंतौ जस गव जियो पयतो शरणी तुमरी शरण तुमरी अस तुम ही सज्जन सोहेले रखो रखण हर दयाला नानक करके गोले रखो रखण हार दयाला नानक करके गोले वाहे गुरु अमुल गुण अमुल वापार अमुल वापारिये अमुल पंडार अमुल गुण अमुल वापार अमुल वापारिये अमुल पंडार अमुल आमे अमुल ले जाय अमुल पाए अमुल समाय अमुल धर्म अमुल दीवान अमुल तुल अमुल प्रवान अमुल बख्शीश अमुल निशान अमुल करम अमुल फुरमान अमुलो अमुल आख्या ना जाए आख आख रहे लिवलाय अखें वेद पाठ पुराण अखें पढ़े करें बखियाण आखें ब्रह्मे आखें इंद आखें गोपी तै गोविंद आखें ईश्वर आखें सिद्ध आखें किते किते बुद्ध आखें दानव आखें देव आखें सुर नर मुन जन सेव केते आखे आखण पाय केते कह कह उठ उठ जाय एते किते होर करे ता आख न सके के जे वड पावे ते वड होए नानक जाने सचा सोए।

गुरु सतगुरु संग कीरे हम थापे तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सोहेले राखो।

परमेश्वर बणत बनाई फिर डोलत कतहु नाही। साचे साहिब स्यो मन मान्या हर सर्व निरंतर जान्या रहा।

सब जी तेरे दयाला, अपने भगत कर है प्रतपाला, अचरज तेरी वड्याई, नित नानक नाम त्याई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सोहेला रागौड़ी दिपकी माला पहला, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, जय कर कीरता की है करते का होए विचारू, तित कर गावो सोहेला सिमरु सृजनहार, तुम गावो मेरे निरभउ का सोहेला, हों वारी जित सोहेला सदा सुख होए रहा, नित नित जीअड़े समालियन देखेगा देवनहार, तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दा कम सुमार, संबत सह लिखिया मिलकर पावो तेल, देहो सज्जन सीसड़ियां जो होवे सब सिओ मेल, कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन, सदनहारा सिमरिए नानक से दे आवन रागा सामला पहला, छे कर छे गुर छे उपदेश, गुर गुरे कुवे सनेक, बाबा जय कर करते कीरत होए, सो कर राख बढ़ाई तोए रहाओ, विश्वे चसियां कड़ियां पहरा थिती वारी महा होवा, सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के तिवेश, राग तनासरी महला पहला, गगन में थाल रवचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल आन लो पवन चबरो करे, सगल बनवाए फूलंत ज्योति, कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत तेरी राहो, सहस तब नैन नना नैन है तो ही को, सहस मूरत नना एक तो ही, सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन, सहस तब गंध इव चलत मोही, सब मह जोत जोत है सोए, तिसके चानन सब में चानन होए, गुर साखी जोत प्रगट होए, जोत इस पावे सो आरती होए, हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो, अनदिनो मोहे आही प्यासा, कृपा जल देहे नानक सारंको, होए जाते तेरे नाए वासा, रागौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर बहु भरया मिल साधु खंडल खंडा है, पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हरलि मंडल मंडा है, कर साधु अंजलि पन वड्डा है, कर डंडाओत पुन वड्डा है, राहो साकत हर साध न जाने, तिन अंतर हो मैं कंडा है, ज्यों ज्यों चले चुपे दुख पावे, जमकाल सह है सिर डंडा है, हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण पौ खंडा है, अविनाशी पुरु पाय परमेश्वर, पो सोभ खंड ब्रह्मंडा है, हम गरीब मस्कीन प्रभु तेरे हर राख राख वड वड्डा है, जन नानक नाम धार टेक है, हर नाम ही सुख मंडा है, राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, करो विनंती सुनो मेरे मीता, संत कहल की बेला, इहां खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सोहेला, आउद कटे दिन सरे नारे, मन गुरमिल का सवारे रहो, एहो संसार सब आवन जाना, मन मूरख चेत अजाना, हर ज्यो कृपा एहो संसार विकार संसे में, तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पियावे, जाको आए सोई बिहार जो हर गुरते मने बसेरा, निज घर महल पावो सुख सहजे बहुर न होए गो फेरा, अंतर जामी पुरख विधाते श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास एह सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे, अंतर जामी पुरख विधाते श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास एह सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

अहनिष सहज सुख दर्शन पर से गुरु के जन्म मरण दुख हो वै शिफत समि नूर अरसह पुरसह तुद डिठे सच्चे पातशाह।

अलंकार सतगुर प्रसाद, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, अनल अगम जैसे लहर में उदध, जल केवल जल माही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयो साहिब सतगुरु गुरु गरीब नवाज, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब, किरपालू सतगुरु जी ने कृपा बख्शिश कीती है। पावन पवित्र तख्तां ते अमृत वेले प्रकाश मानो करके सतगुरु जी ने दर्शन दीदार बख्शिश कीते हन, अते उपरंत अज ते इलाही दरगाही श्री मुखवाक आप जी ने सरवण कीते हन, जो सोरठ राग विच्चों भगत रविदास जी की अमृत रसना तो उचारण कीती गई बाणी है। उस बाणी विच्चों ए पावन शब्द हुक्म रूप विच सतगुरु जी ने बख्शिश कीता है। गुरु साहब जी के पावन अंग 657 58 उपर ए पावन शब्द दर्ज है। भगत रविदास जी ने इस पावन शब्द अंदर ये बख्शिश मेहरामत कीती है कि हे वाहिगुरु, जिन्ना चिर जीव मनुख माया दे भरम विच है, अग्ञानता दे हनेरे विच भुलेखे विच है, उन्ना चिर ये भरम ये फर्क ये दुविधा बनी रहिंदी है कि जीव वखरा है, मैं वखरा हाँ, परमात्मा वखरा है। इस भिन्नता करके ही सारे दुख तकलीफां संसार दे ताप मनुख नूं व्यापदे हन, पर ज्यों ही तेरी कृपा किसे जीव पर हुंदी है, जद उस नूं तेरी कृपा दे द्वारा ये प्रतीत हुंदा है, भरम टुटदा है कि ये मेरी मैं भी उस परमात्मा दा ही रूप है, वो परमात्मा ही सारे पासे व्यापक है, तां ये मैं दा हंगता दा भरम टुट जांदा है। वो परम टुटन दे नाल जीव परमात्मा विच इस तरह समा जांदा है जिवें हवा दे नाल पानी दे उत्ते लहरां तां बनदियां ने, प्रतीत हुंदा है कि लहरां वक्रियां ने पर वो पानी दे रूप हुंदियां ने। इस तरह फुरनिया द्वारा अंगता द्वारा मनुख नूं कदी कदी भरम पैंदा है कि मैं वक्रा हाँ, भिन्न हाँ, पर वो असल विच वाहिगुरु परमेश्वर दा ही रूप हुंदा है। जिवें सोना ते सोने तो बने गहने इको ही हन, पर घाड़त करके वो वक्रे प्रतीत हुंदे ने। हे वाहिगुरु, जिदे ते तू कृपा कर दे, बख्शिश कर दे, उहदे अंदर दा भरम मार देना है, भुलेखे खत्म करके उहनूं अपने चरणां विच जोड़ लेना है। यही भगत जी ने अज दे इस पावन शब्द विच कृपा कीती है कि हंकार होमै मनुख दे अंदर पर्दा पा के रखदा है, वाहिगुरु तों दूरी बना के रखदा है। जदों उहदी कृपा हो जाती है, हंगता हंकार मिट के जीव उहदे विच समा जाता है। सतगुरु जी कृपा करन, सानू दरों करूं नामदान गुरसिखी जीवन चढ़दी कला बख्शिश करके नवाजन। अज धन धन बाबा बुढ़ा जी, तिना दा जन्म दिहाड़ा भी है। जोड़ मेला बाबा बुढ़ा जी बड़े उत्साह दे नाल कथू नंगल दी धरती ते नगर रमदास विच जिथे बाबा जी दा जन्म होया, बड़ी श्रद्धा भावना दे नाल उन्हां नूं याद कीता जांदा है। बहुत वड्डी सेवा गुरु घर दे विच लमेरा समा निम्रता विच हंगता नूं मार के उन्हां ने कीती। तकरीबन 125 साल की आरबला उन्होंने बतीत की है, उहदे विचों बहुत लम्मा समा गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी तो लैकर के 6वें पातशाह तक वह सतगुरां दे घर दे सेवादार बन के रहे, ते आप हत्थी गुरु साहिबानां नूं गुरियाई तिलक भी दिता। उन्हां तो उपरंत उन्हां दी अंश वंश नूं भी यह सेवा लगातार मिलती रही, बड़ी वड्डी महान सेवा दे मालक संत।

भूदान करन करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मित जान हो आपे अपन संगा प्रभ राखे तुमरी उस्त तुम ते हुए नान कवर न जान सकुए सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सासंग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्यम मह उद्यम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते उत्तम थान नानक जिहि घट वसै हर नाम सलो निर्गुण यार एयानिया सो प्रभ सदा सम्भाल जिन किया तिस चीत रख नानक निभही नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू सासुवार सिगारिया गर्भगन में जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जो बन भोजन सुख सूद बिरद पया उपर साख सैन मुख पयाओ बैठ कौ दैन एहो निर्गुण गुण कछु न बूझ है बख्श ले हो तव नानक सीजै जेह प्रसाद धारू पर सुख बसै सुत प्रात मीत बनता संग हसै जे प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पाव कमुला जेह प्रसाद भोगै सब रसा सुगल समग्री सांग साथ बसा दीने हस्त पाव करने तरसना तिसै त्याग अवर संगरचना ऐसे दुख मुड़ंद व्यापे नानक काढ़ लियो प्रभ आपे आदंत जो राखन हार तिस्य प्रीत न करै गवार जाकी सेवा नव निध पावै तास्य मूड़ा मन हिलावै झूठा गुरु सत सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावै दरगह मान तिसै बिसारै मुग्ध जान सदा सदैव भूलन हार नानक राखन हार अपार रतन त्याग कौडी संग रचै साच छोड़ झूठ संग मचै जो छटना सुवस्त्र कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करे संग सहाय तिस पर हरै चंदन लेप उतारै धोए गर्द प्रीत भस्म संग होए अंधकूप मैं पथ विकराल नानक काढ़ लेहु प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा कर दिन रात बाहर पेख अंतर मल माया छप सुनाई कछ करे छपाया बार ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लुभ सुवान अंतर अगन बार तन स्वाहा गल पात्र कैसे करे अथाह जाके अंतर बसै प्रभ्याप नानक तेजन सह समात सुनंदा कैसे मार्ग पावै कर गहले होड़ निभावै काम बुझार तू जय डूरा निष्कहिय तो समझे पूरा कहा विष्ण पद गावै गुंग जितन करे ताओ पी सुर भंग कह पिंगुल पर्वत पर पवन नहीं हो तू हाँ उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाई सुआवै न चीत जो बैराई तास्यो प्रीत बलुआ के गृह पीतर बसै आनंद केल माया रंग रसै दृढ़ कर मानै मने प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोक त्रोह आहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लिहो अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत उच्चे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरै सूत्र धारी तुम ते हुए सुआग्याकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास।

नानक कहू न सी जई बिन नावै पत जाय। अष्टपदी दस वस्तूले पाछै पावै, एक वस्त कारण विखोट गवावै, एक भी न दे दस भी हिरले, तौ मूड़ा कहो कहा करे। जिस ठाकुर स्यो नाही चारा, ताकू की जय सद नमस्कारा, जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहू मन उठा। जिस जने अपना हुक्म मनाया, सर्व तोग नानक तिन पाया, अगंत साव अपनी देरास, खात पीत बरतै अनदोलास, अपनी अमान कुछ बहुर साहु ले अज्ञानी मन रोस करे। अपनी प्रति ताप ही खोवे, बहुर उसका विश्वास न होवे, जिसकी वस्तु से आज्ञा रख है, प्रभु की आज्ञा मान मत है, उसते चौगुन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। अनिक भांत माया के हित, सर पर होत जान अनित, बिर की छाया स्यो रंग लावे, उ बिन सह मन पुछतावे, जो दिसै सो चालनहार, लपटरियो तै अंध अंधार, बटाओ स्यो जो लावे नेहि, ताकू हाथ न आवै केहि, मन हर के नाम की प्री सुखदाई, कर कृपा नानक काप ले लाई। मिथ्या तन धन कुटम सुबाया, मिथ्या हो मैं ममता माया, मिथ्या राजोवन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ती सुबस्तरा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता, मिथ्या त्रो मोह अभिमान, मिथ्या पशु पर कर्त गुमान, अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनहै, मिथ्या हस्त पर दर्व को हिरहै, मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद, मिथ्या रसना भोजन न स्वाद, मिथ्या चरण पर विकार को तावह, मिथ्या मन पर लोभ लुभावह, मिथ्या तन ही पर उपकारा, मिथ्या बास लेत विकारा, बिन बूझे मिथ्या सब भये, सफल दे नानक हर हर नाम लय, बिरथी साकत की आर जा, साच बिना कह होवत सूचा, बिरसा नाम बिना तन अंध, मुखावता कै दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन वृथा बिहाये, मेघ बिना ज्यो खेती जाए, गोविंद भजन बिन वृथे सब काम, ज्यो कृपन के निरार्थ दाम, धन धन ते जन जे घट बस्यो हर नाओ, नानक ता कै बल बल जाओ, रहत अवर कछवर कमावत, मनि प्रीत मुखो गंडलावत, जानन हार प्रभु परबीन, बाहर भेद न काहू भीन, अवर उपदेश आप न करै, आवत जावत जन्मै मरै, जिसके अंतर बसै निरंकार, तिसकी सीख तरै संसार, जो तुम भाने तिन प्रभ जाता, नानक गुण जन चरण पराता, करूं बेनती पार ब्रह्म सब जानै, अपना किया आपह मानै, आपह आप आप करत नबेरा, किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा, उपाव से आनक सगल ते रहत, सब कछ जाने आत्म की रहत, जिस पावे तिस लय लड़ लाए, थान थनंतर रहा सुमाए, सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमक जप नानक हरी। श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह, बिन सुजाए अहंग मेव, नानक प्रभ शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव। अष्टपदी जे प्रसाद छत्ति अमृत खाए, तिस ठाकुर को रख मन माही, जे प्रसाद सुगंध तन लावै, तिसको सिमरत परम गत पावै, जे प्रसाद बसह सुख मंदर, तिसह त्याय सदा मन अंदर, जे प्रसाद गृह संग सुख बसना, आठ पहर सिमर हो तिस रसना, जे प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याई है त्यावन जोग, जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै, तिसे त्या कतवर लुभावै, जे प्रसाद सुख से सुविजय, मन आठ पैर ताका जस गा विजय, जे प्रसाद तु सब को मानै, मुखता को जस रसन बखानै, जे प्रसाद तिरु रहता धर्म, मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म, प्रभ जी जपत दरगह मान पावह, नानक पत सेती कर जावह,
ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦਾਰੋ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ, ਲਿਵ ਲਾਵੋ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸੁਨੇਹੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਰਾ ਉੱਲਾ ਰਹਿਤ, ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵ ਹੈ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾਕੇ, ਮਨ ਸਰਨੀ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ, ਮਨ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਉੱਚੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਏ ਦੁਰਲੱਭ ਦੇਹੇ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ ਹੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪੂਖਨ ਪਹਿਰੀ ਜੈ, ਮਨ ਤੇ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕੀ ਜੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵ ਹਸਤ ਸਵਾਰੀ, ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਕਬਹੁ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਕ ਧਨਾ, ਰਾਖ ਪ੍ਰੋਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ। ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸਚ ਸਹਿਤਿਆਈ। ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਈ ਜੋ ਇਹ ਕਲਖੈ, ਈਹਾ ਊਹਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰੱਖੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੈ ਪੁੰਨ ਬਹੁਦਾਨ, ਮਨਾਠ ਪੈਰ ਕਰ ਤਿਸਕਾ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ

रात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत रहै गुर प्रसाद नानक जस कहै जे प्रसाद सुनहै करण नाद जे प्रसाद पेखै विस्माद जे प्रसाद भूलै अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना जे प्रसाद हस्त कर चलहै जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परम गत पावै ये प्रसाद सुख सह समाव है सब प्रभु त्याग और कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो ये प्रसाद तुम प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल न मनो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूढ़ तू ताको जापो जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे जिसे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तोता स्योराच जे प्रसाद सब की गत होए नानक जब जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए सर्व निदान प्रभु तेरी मया आपू कछु न किन्हू लया जित जित लावो तित लगै हर नाथ नानक कै कछु नहात सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुखता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध का संग मुखूजल होत साध संग मन सगली खोत साध का संग मिटे अभिमानु साध का संग प्रगटे सुज्ञानु साध का संग बुझे प्रभ नीरा साध संग सब होत नबेरा साध का संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन परानी नानक साध की शोभा ब्रह्म सुमानी साध के संग अगोचर मिलै साध के संग सदा प्रफुल्लै साध के संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुए सब की रेन साध के संग मनोहर बैनु साध के संग न कतु तावै साध संग अस्थित मन पावै साध के संग माया ते भिन्नु साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु कैसंग महापुनीत साध संग किस्यो नहीं बैरु साध के संग न भीगा पैरु साध के संग ना ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध के संग ना ही हो ताप साध के संग तजै सब आपु आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साध के संग न कब हुंता वै साध के संग सदा सुख पावै साध संग बस्त गोचर लहै साधु कै संग अजर सहै साध के संग बसै थान उचै साधु कै संग महल पहुँचै साध के संग दृढ़ सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुरबानु साध के संग सब कुल उदारै साध संग साजन मीत कुटम निस्तारै साधु कैसंग सो धन पावै जिस धन ते सब को वरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साध कसंग शोभा सुर देवा साधु कैसंग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन साध कसंग सर्व थान गामू नानक साध कसंग सफल जनामू साध कसंग नहीं कचकाल दर्शन भेटत होत निहाल साध कसंग कलुकत हरै साध कसंग नरक पर हरै साध के संग यहाँ उहाँ सुहेला साध संग विचरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावे साध के संग न बिरता जावे पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उदरै साध सुन रसै साध के संग सुनो हर नाऊ साध संग हर के गुण गाओ साध के संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साध के संग लगै प्रमीठा साधु कै संग कट कर डीठा साध संग भय आज्ञाकारी साध संगत भई हमारी साध के संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साध की महिमा वेद न जान है जिता सुन है तेता बखियान है साध की उपमा ते गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का ना ही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंचते ऊंची साध की शोभा
मूछ ते मुची साध के शोभा साध बनियाई नानक साध प्रभेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखे किस बिन कोए नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्व कोसो ब्रह्म ज्ञानी कै दृश समान जैसे राज रंको लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी कै तीर जेक ज्यो बसदा को खोते को चंदन ले ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यो पावक का सह सुभाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगाश जैसे तारू परे आकाश ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र शत्रु समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी उचते उच्चा मने अपना है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नानक जिन प्रव्याप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल किरी ना तुम रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी कुप्रयासु ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाशु ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी परोपकारु माहा ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंदा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कै होए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभसंग ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत ब्रह्म ज्ञानी अंग बुत्यागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी कै नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी कै होए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मनवाही ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सुधा देश ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए दाक्यर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी कंत न पारु नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी साधु जीवे नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक उर तारे जो अंतर नाम सर्व में पिख है भगवान निमक निमक ठाकुर नमस्कार है नानक वपर सगल निस्तार अष्टपदी मिथ्या ना ही रसना परसु मन में प्रीत निरंजन दर्शु पर त्रय रूप न पिक नेत्र साध की टैर संग हेत करना सुने काहू की निंदा सब ते जाने आप उसको मंदा गुरु प्रसाद विख्या पर हरे मन की वासना मन ते टरे इंद्री जित पंच दोग ते रहत नान कोट मध्य को ऐसा परसु वैष्णु सो जी सुपर सुप्रसन्न विष्णु की माया ते हुए भिन्न कर्म करत हुए नहीं कर्म तिस वैष्णु का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाचे केवल भगत कीर्तन संग्राचे मंत्र यंत्र सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप जड़ै वह नाम जपावै नानको वैष्णु परम गत पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिन सह सगला भरम कर पूजै सगल पार ब्रह्म सा संग पापा मल खुवै तिस भगवती की मत उत्तम हुवै भगवंत की टहल करै नित नीत मंथन अर्पै विष्ण परीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है
राम नामा तुम्हें शुद्ध है, राम नाम सा रस पीवे, उस पंडित के उदय जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो नया वे, वेद प्राण सिमृत बूझे मूल, सुख में जाने स्थूल, चौवर नाकु दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरना में जपे को नाम, जो जो जपे तिसकी गत होए, सा सुन पावे जिन कोए, कर कृपा अंतरुर तारे, पस प्रेत मूत पात्र को तारे, सर्व रोग का उखद नाम, कल्याण रू मंगल गुण गाम, काहु जुगत किते न पाइये धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास, आत्म राम तिसन त्रि आया, दास जसन तन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह परवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सो जी परे, सगल संग आत्मो दास, ऐसी जुगत नानक राम दास, प्रभ की आज्ञा तम हितावे, जीवन मुख सो कहावे, तैसा हरक तैसा सोग, सदानंद तै नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी, तैसा मान तैसा विमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वरता ईसाई जुगत नानको पुर कहिए, जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाऊ, जित जित कर राखे तैसा तिन आऊ, आपे करण करावण जोग, प्रभावे सोई फुन होग, पसुर आप अंत तरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पय निहाल, सलोक गुस्तत करे अनेक जन, अंत न पारावार, नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनेक प्रकार, अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट बन भ्रमय उदासी, कई कोट वेद के श्रोते, कई कोट तपिसर होते, कई कोट आत्म ध्यान धार है, कई कोट कव का विचार है, कई कोट नवत नाम त्याव है, नानक करते कंत न पाव है, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अभिगातम निकोर, कई कोट पर दर्व को हिर है, कई कोट पर दुख न कर है, कई कोट माया श्रम माही, कई कोट पर देश पर माही, जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिरजति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प पाए, कई कोट पाथर बिरख निप जाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट सस्यर सूर नखेत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूतार है, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है, कई कोट राजस्थान सातक, कई कोट वेद प्राण सिमृत शास्त्र, कई कोट की रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरिमेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जाकिनर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत सुकर मिर्गाच, सब ते नेरे सबूते दूर, नानका पलिप्त रहा भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नर सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म जी वह मरय, कई कोट बोजूनी फिर है, कई कोट बैठत ही काहे, कई कोट काल है थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जय जय पाणा तै तै राखे, नानक सब किच प्रभ के हाथे, कई कोट भय वैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ को खोजंते, आत्म है पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रप्यासु, तिनको मिल्यो प्रभ विनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको हो आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खाणी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड, कई कोट हो अवतार, कई जूत किन्नो विस्तार, कई बार पसरो पासार, सदा सदै के कंकार, कई कोट कीने बहुपात, प्रभ ते हो ब्रह्मा समात, ताकांत न जाने कोई, आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन हो तुम प्रगास,
ਕਈ ਕੂੜ ਤੱਤ ਕੇ ਬੀਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਹਾਰੇ ਕੋ ਨਿਤਰੇ ਕਈ ਕੂੜ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਭੈ ਸਤਸਦ ਹੀ ਜੀਵੈ ਕਈ ਕੂੜ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਆਤਮ ਦਾ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਵੈ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸੁਮਾਰੇ ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਇੱਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਵਲਿਹਾਰ ਨੈ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਸੋਇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪ ਥਾਪ ਨਹਾਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਅਧਰ ਰਹਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਉਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁਕਮੇ ਅਨਿਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਸਮੈ ਰਿਹਾ ਸੁਮਾਈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਮਾਨੁਖ ਗਤ ਪਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰੱਖੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੈ ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਣ ਵਿਚਾਰੈ ਦੂਹਾਂ ਸੁਰਿਆਂ ਤਾਪ ਸੁਆਮੀ ਖੇਲੈ ਬਿਕਸੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਰਨ ਆਵੈ ਕਹੋ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਆਵੈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ ਇਸਕੈ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਲੇ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ ਅਨਜਾਨਤ ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਚੈ ਜੇ ਜਾਣਤ ਆਪਣਾ ਬਚੈ ਭਰਮੇ ਭੁੱਲਾ ਦਹਿ ਦਿਸਤਾਵੈ ਨਿਮਖ ਮਾਇ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਫਿਰਿਆਵੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲੇ ਖਿਨ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾ ਜਾ ਕਾ ਤਿਸ ਕਛੂ ਨਾਇਆਵੈ ਤਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦਾ ਤਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ਜਾ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੈ ਬਖਸੀਸ ਤਾ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਗਨੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਆਪਣੀ ਬਣਤਾ ਬਣਾਈ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਵਡਾਈ ਇਸਕਾ ਬਲ ਨਾਹੀ ਸਹਾਥ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪੁਰਾ ਜੀਉ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨਥੀਓ ਕਬਹੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਬਸੈ ਕਬ ਹੂੰ ਸੋਗ ਹਰਕ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਕਬ ਹੂੰ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ ਕਬ ਹੂੰ ਊਬ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ ਕਬ ਹੂੰ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕਾ ਮਿਲਾਵਨਹਾਰ ਕਬ ਹੂੰ ਨਿਰਤ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਤ ਕਬ ਹੂੰ ਸੋਏ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਬ ਹੂੰ ਮਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ ਕਬ ਹੂੰ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋ ਤਰਵਾਲ ਕਬ ਹੂੰ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬਡ ਰਾਜਾ ਕਬ ਹੂੰ ਪੇਘਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ ਕਬ ਹੂੰ ਅਪਕੀਰਤ ਮੈਂ ਆਵੈ ਕਬ ਹੂੰ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਵਹੀ ਰਹਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸਚ ਕਹਿ ਕਬ ਹੂੰ ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਕਰੇ ਬਖਿਆਨ ਕਬ ਹੂੰ ਮੋਨ ਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨ ਕਬ ਹੂੰ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨ ਕਬ ਹੂੰ ਸਿਰ ਸਾਧਿਕ ਮੁਕਿਆਨ ਕਬ ਹੂੰ ਕੀਟ ਹਸਤ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਜੀਆ ਅਨਿਕ ਜੋਨ ਭਰਮੈ ਭਰਮੀਆ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜੋ ਸਵਾਦੀ ਦਿਖਾਵੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਚਾਵੈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਵਰਨਾ ਕੋਏ ਕਬੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਿਉ ਪਾਵੈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨ ਆਵੈ ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਉਸ ਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ਼ ਮੰਤਰ ਨਾਮ ਰਤੇ ਕਰੰਗ ਸਦਾ ਬਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ।

बृहस्पति जिसके अंतराज विमान सो नरक पाती होवत स्वान जो जानै मैं जो बनवंत सो होवत बिष्टा का जंत आप इसको करवंत कहावै जन मरै भोजन परमावै धन भूमिका जो करै गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै नानक इहां मुक्ता गै सुख पावै धनवंता होए कर गरबावै तृण समान कर संग न जावै बहुलस कर मान कूपर कर आसु पाल भीतरता का हुए बिनासु सब ते आप जाने बलवंत किन मैं हुए जय पसमंत किसे न बदै आप अहंकारी धर्म राय तिस करे कुआरी गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करै अवतारी श्रम पावे सगले बिरथारे अनिक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार अनिक जतन करा तुम नहीं द्रवै हर दरगह कौ कैसे गवै आपस कौ जो भला कहावै तिसे भलाई निकट न आवै सर्व की रीन जाका मन हुए कौ नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ हुए तब इसको सुख नाही कोए जब ए जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लगने चलना ही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक छूटे सहस खटे लग कूट तावै तृप्त न आवै माया पाछै पावै अनक भोग बिखिया के करे नै तृप्तावै खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ वृथे सब का जय नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी किसे प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करने हार इसके हाथ कहाँ विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो किच कीनो सु अपने रंग सब ते दूर सबु कै संग बुझै दिखै करै विवेक अपैक अपै अनेक मरण बिनसै आवै न जाय नानक सद ही रहा सुमाय आप उपदेशै समझै आप आपे रचिया सब कै साथ आप कीनो अपन विस्तार सब कछ उसका उकरने हार उसते भिन्न

निहार। संत के निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। अष्टपदी संत कै दुखन आर जा कटे, संत कै दुखन जमते नहीं छुट्टे। संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक में पाए। संत कै दुखन मत हुए मलीन, संत कै दुखन शोभा ते हीन। संत के हते को रखे न कोए, संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए। संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी तरे। संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग ज्यों लवै। संतन कै दुखन सर्प ज्यों पाए, संत कै दुखन त्रिगद ज्यों किरमाए। संतन कै दुखन तृष्णा में जलै, संत कै दुखन सब को छलै। संत कै दुखन ते सब जाए, संत कै दुखन नीच निचाए। संत दुखी का ताव को नाहि, नानक संत पावै तो होए भीगत पाए। संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिन टिक न पाई। संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखिया अरदीन। संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग। संत के निंदा दुख में दुख, नानक संत पावै तो उसका पी हुए मुख। संत का दुखी सदा पवित्र, संत का दुखी किसै का नहीं मित। संत के दुखी को नान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे। संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा भिखारी। संत का दुखी जन में मरे, संत की दुख ना सुख ते टरे। संत के दुखी को ना ही ठाऊ, नान संत पावै ता ले मिलाई। संत का दुखी अद बीच ते टूटे, संत का दुखी कित काज न पहुँचे। संत के दुखी को ध्यान परमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए। संत का दुखी अंतर ते थोथा, ज्यों सास बिना मृतक की लोथा। संत के दुखी की जड़ किछ नाहे, अपन बीज आपे ही खाए। संत के दुखी को वरण रखन हार, नान संत पावै तां लै उभार। संत का दुखी इउं बिल लाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पाव किंदन नहीं त्रापै। संत का दुखी चुटै केला, ज्यों बुआड़ तिलखे तुमाहि दुहेला। संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत। किरत निंदक का तुर ही पया, नानक ज्योतिष पावै सोई थया। संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी न मरे न जीवाई है। संत के दुखी की पूजे न आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा। संत का दुख न तृष्टे कोई, जैसा भाव है तैसा कोई होए। पया किरत न मिटे कोई, नानक जाने सच्चा सोए। सब काट तिसके हो करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभ की उस्तत करो दिन रात, तिसहते आवो सास गिरा। सब कछ वरते तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया। अपना खेला करने हार, दूसर कौन कह विचार। जिसनु कृपा करे तिसे अपन नाम दे, बड़ भागी नानक जन से। शलोक तजहु से आनप सुरजन हो, सिमरो हर हर राय। एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पौ जाय। अष्टपदी मानुकी टेक प्रीति सब जान, देवन को एक है भगवान। जिसका दिया रह अघाए, बौर न तृष्णा लग गया। मारे रखे को आप, मानुके किछ नाही हाथ। तिसका हुकुम सुख होए, तिसका नाम रकंठ परोए। सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागे कोए। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लह जियो। नैनो पेख ठाकुर का रंग, सा संग बिन सह सब संग। चरण चलो मार गोबिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद। कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानकू जल मत्था। बड़ भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे। राम नाम जो करह विचार, से तन मंत गणी संसार। मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी।
एको एक एक पहचाने इत उत की ओसो जी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन्हें निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपन आप सुजै तिसकी जानो तृष्णा बुझै सा संग हर हर जस कहत सर्व रोग त्यो हर जन रहत अनदिन कीर्तन केवल बखियान कृष्ण मैं सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटी है जम की पासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसै न लागै दूख जिस कौ हर प्रभ मन चित आवै सो संत होएला नहीं दुलावै जिस प्रभे अपना कृपा करै सो सेवक को किसते डरै जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोधत सोधत सोधत सीजिया गुर प्रसाद तत् सब बूजिया जब देखूं तब सब किच मूल नानक सो सूखम सोई स्थूल न किच जन्मै न किच मरे अपन चलता भी करे आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट आपे आप सगल मैं आप अनिक जुगत रच थाप थाप अविनाशी नाही किच खंड धारन धारे हो ब्रह्मांड अलक अपे पुरख प्रताप आप जपाए ता नानक जाप जिन प्रभ जाता सु सोभावंत सगल संसार उदरै तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उदारण प्रभ के सेवक दुख विसारण आपे मेल लय कृपाल गुर का सब जपै निहाल उनकी सेवा सोई लागै जिसनु कृपा करह बिट भागै नाम जपत पावै विश्राम नानक तिन पुरख उत्तम करमान जो किस करै सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसै हर संग सहज सुभाई हुवै सो होए करने हार पछाने सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिस ते उपजे तिस माहे सुमाहे ओए सुख निदान उन्हों।

प्रभ की जो सगल घट सो है, धनवंता हुए क्या को गर्व है, जा सब किस किसका दिया दर्व है, अत सूरा जी को कहा वह, प्रभ की कला बिना कहता वह, जे को हुए बह दातार, तिस देन हार जाने गवार, जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग, नान सूजन सदा अरोग, ज्यों मंदर को थमे थमन, त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन, ज्यों पाखाण नाव चढ़ तरे, प्राणी गुर चरण लगत निस्तरे, ज्यों अंधकार दीपक प्रकाश, गुर दर्शन देख मन हुए विगास, ज्यो महाउ ध्यान में मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे, तिन संतन की बांचो तूर, नान की हर लोचा मन मूर काहे बिल लाइय, पूर्व लिखे का लिखिया पाइय, दुख सुख प्रभ देवन हार, अवर त्याग तू तिसे चितार, जो कछ करे सोई सुखमान, भूला काहे फिरे अजान, कौन बसताई तेरे संग, लपट रो रस लोभी पता।

नानक सो जन सच समाता सलोक रूप नरेक नरंग किच त्रिहुगुण ते प्रभ भिन्न किस हे बुझाए नानका जिस हो वै सो प्रसन्न अष्टपदी अविनाशी ब्रह्मन मैं राख मान की तू प्री त्याग किसते परै नाही किच कोए सर्व निरंतर एको सोए आपे बीना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निदान दयाल बख्शंद साथ तेरे की चरणी पाओ नानक कै मन हो अनुराव मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरण भरण जाका नेत्र पूर तिसका मंत्र न जाने होर अनद रूप मंगल सद जाकै सर्व थोक सुनिय करता कै राज मै राज जोग मैं जोगी तप मैं तपीश्वर गृष्ट मैं भोगी त्याए त्याए भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे चंदास नाम त्या वैसे त्यो गुण मह जा को परमाही जन मरे फिर वह जाए ऊच नीच तिसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जानू।

रहो पूर्ण सब ठाए, नाना बिद कर बणत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब कट तिसके सब तिसके ठाओ, जब जब जीवे नानक हर नाओ, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमृत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवण, कर कृपा जिसे अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गत पाए, रूप सत जग सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जा की बाणी, सत पुरख सब माहे समाणी, सत कर्म जा की रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब भली, सत नाम प्रभु का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुर ते पाए, सत बचन साधु उपदेश, सत ते जन जा कर दे प्रवेश, सत निरत बुझे जे कोए, नाम जपता की गत होए, आप सत किया सब सत, लपे जाने अपनी मित गत, जिसकी सिर सो करने हार, अवर न बूझ करत विचार, करते की मित न जाने किया, नानक जो तिस भाव है सो वरतिया, बिस्मन बिस्म भय बिस्माद, जिन बुझिया तिस आया स्वाद, रब कै रंग राजन रहे, गुर कै बचन पदार्थ लहे, हुए दाते दुख काटन हार, जा कै संग तरै संसार, जन का सेवक सो वड भागी, जन कै संग एक लिव लागी।

नानक हो सी पे सच अष्टपदी चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत ध्यावनहार आप सत सत सवतारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुजनहार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करन करावन तिन मूल पछानिया जा कै हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिन मन प्रगटाया भय ते निर्भउ होए बसाना जिसते उपजिया तिस माहि समाना बस्त माही ली बस्त गडाई ताको भिन न कह न जाई बुझै बुजनहार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का शिव का ज्ञाकारी ठाकुर का

सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जान संग प्रभु का सेवक नाम करंग सेवक को प्रपालन हारा सेवक की राखे निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभु तारे नानक सो सेवक सास सास मारे अपने जन का पर दाटा है अपने सेवक की सर पर रखे अपने दास को देव डाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत रखे ताकि गत मित कोई न लाके प्रभु के सेवक को न पहुँचे प्रभु के सेवक उच्चे उच्चे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया नीकी कीरी में कल रखे पस्म करे लश्कर कोट लाके जिसका सास न काट तापू ताको राखत दिख रहात मानस जतन कर्तव पात तिसके कर्तव बिरते जात मारन रखे अवर न कोई सर्व जिया का रखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रबल कविडानी बारंबार बार प्रभु जपिए पियम मृत्यु मंथन तृपिय नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिसकी चवर नाही दृष्टाया नाम धन नाम रूप रंग नाम सुकर नाम का संग नाम रस जो जन तृपतानी मंथन नाम है नाम सुमानी उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सदकाम बोलो जस जे बा दिन रात प्रभ अपने जन की नींदात करे भगता तुम कह चाहे प्रभ अपने शिव रह सुमाए जो हुआ हो उत्सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पहचाने तिसकी महिमा कौन बखानू तिसका गुण कह न जानू आठ पहर प्रभ सहजूरे कहो नानक से जन पूरे मन मेरे तिन की उठले मन तने अपना तिन जन देहे जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व तो का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर्श पा मिटावे अवर सियान सगली चाट तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान हो भी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा श्लोक सतपुरख जिन जानिया सतगुरु तिस का नाऊ तिसकै संग सिख उदरे नानक हर गुण गाओ अष्टपदि सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेव कौ गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरे गुर बचनी हर नाम उचरे सतगुर सिख के बंधन काटे गुर का सिख विकार ते हटे सतगुर सिखो नाम धन दे गुर का सिख वडभागी हे सतगुर सिखा हलत पल सुवार नानक सतगुर सिखो जी नाल सुमार गुर कै गृह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आपस को कर कच न जनावे हर हर नाम हृदय सत्यावे मन बिचे सतगुर कै पास तिस सेवक के कार्य रास सेवा करत हुए ने कामी तिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिसे आप करे नानक सो सेवक गुर की मतले बीस बिस्वे गुर का मन मान सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनेक बार गुर को बल जाओ सर्व निदान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक है आप नहीं कछ परम सह सियान लया ना जाइए नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइये सफल दर्शन पेखत पुनीत पर सत चरण गत निर्मल रीत पेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दर गह गवे सुनकर वचन करन आघाने मन संतोखा तुम पतियाने पूरा गुरख उजा का मंत्र अमृत दृष्ट पिके हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिस लय मिलाए जे बाए पुष्टत अनेक सतपुरख पूर्ण बवेक काहू बोल न पहुंचत प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्बानी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनेक भगत बंधन नित करहे चरण कमल हृदय सिमरहे
सद बलिहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभु जपने एहू हरस पावे जन कुए अमृत पीवे अमरस हुए उस पुरका नाही कदे विनाश जा कै मन प्रगटे गुणता आठ पैर हर का नाम ली सच उपदे शिव को दे वो माया कै संग न लेप मन मैरा कै हर हर एक अंधकार दीपक पर गासे नानक परमो दुख तहते नासे तपत माहि ठाड वरताई अनंत भया दुख नाटे पाई जन्म मरण के मिटे अंदेशे साधु के पूर्ण उपदेशे पौ चुका निरपौ हुए बसे सगल ब्याज मंते खै नसे जिसका साथ इन कृपा तारी सा संग जपना मुरारी ठेत पाई चुके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस्रवन निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला धार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभाव बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोई सर्व निरंतर एको सोए ओत पोत रविया रूप रंग भय प्रगा साध कै संग रच रचना अपनी कल धारी।

सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खिलै सगल जगत चंगियाईयां बुरियाईयां वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ै के दूर जिनी नाम त्याया गए मसकत काल नानक ते मुख

नमो सर्व ज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व यंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्णं नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं सरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी चरपट शांतत्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं प्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुवाल शांतत्व प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरुष अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वको पुन काल यत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरुष उदार मूर्त अजोन आद असेख देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग यत्र तत्र देशा विशा होय फैल्यो अनुराग नाम काम विहीन पेखत तम हूँ नह जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मान तताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेल न अंत को फिर एक देव पेव न जानहि जेह भेद और कतेव रूप रंग न जात पात सो जानहि केह जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बकर फिर चतुर चक मानहि पुर तीन लोक चौदह के बिखै जग जाप ही जेह जाप आद देव अनाद मूर्त थाप्यो सबै जेह थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्वरच्यो स्वयं भवगणन भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख अदेश धर्म धाम सो परम रहत भूत लख भेस अंग राग नारंग जाक जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अभंग नाथम एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपेख सर्वशास्त्र न जानहि जेह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत पाकत नेत कोट सिमरत पुराण शास्त्र न आवही वह चित मधुभार शांत त्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस दिन अनास अजान बाहु सहान साहो राजान राजपानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूतांग अप अपंग गतमित अपार गुणगन उदार मुन गन प्रणाम निरपय निकाम अत दूत प्रचंड मित गत अखंड आलिस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाड्य अंडंड बाडे चाचरी छंद त्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र भरती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र मान्य चत्र चक्र दान्य चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमं न पित्र न कर्मं न काय अजन्मं अजाय न चित्र न मित्र परे हैं पवित्र परथी से अधिशय अदृश्य अकृशय भगवती शंत प्रसाद कसते किया शेज देसे किया भेज पेसै किया गंज करमै किया भंज भरमै किया भेज लोकै किया दैत सोकै किया अवतूत बरनै के विभूत करनै के राजं प्रभा है के धर्मं तुजा है के आशोक वर्ण के सर्वा अपर्ण के यत्न कृति है के शत्रं क्षत्री है के ब्रह्मं स्वरूपे के अनुभव अनूपे के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रं बहीन के एक अधीन के रोजी रजा कह रही मेरे हक है के पाक बेअब है के गैबुल गैब है के अहबुल गुनाह है के साहन सा है के कारण कुनद है के रुजी दहन है के राज करहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण्य है के सर्वत्र भौन है के सर्वत्र देशाय के सर्वत्र पेशाय के सर्वत्र राजय के सर्वत्र साजय के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देशाय के सर्वत्र पेशाय के सर्वत्र कालय के सर्वत्र पालय के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राजय के सर्वत्र सोख है के सर्वत्र पोख है
ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਤ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਦੇਸਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਭੇਸਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਮਾਨਿਆ ਸਦਾ ਵੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨਿਆ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ

ਜਾ ਪਿਆ, ਕੇਸਰ ਬੱਤਰ ਥਾਪ ਪਿਆ, ਕੇਸਰ ਬੱਤਰ ਭਾਨ ਹੈ, ਕੇਸਰ ਬੱਤਰ ਮਨ ਹੈ, ਕੇਸਰ ਬੱਤਰ ਇੰਦਰ ਹੈ, ਕੇਸਰ ਬੱਤਰ ਚੰਦਰ ਹੈ, ਕੇਸਰ ਬੰਗ ਕਲੀ ਮੈਂ, ਕੇ ਪਰਮੰ ਫਾਹੀ ਮੈਂ, ਕੇ ਆਕਲ ਅਲਮ ਹੈ, ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਲਮ ਹੈ, ਕੇ ਹੁਸਨ ਅਲ ਵਜੂ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਅਲ ਰਜੂ ਹੈ, ਹਮੇ ਸੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਲੀਖਤ ਮੁਦਾਮ ਹੈ, ਗਨੀ ਮੁਲ ਸਿਕਸਤ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਉਲ ਪਰਸਤ ਹੈ, ਬਿਲੰਦ ਉਲ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਲ ਜ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਤਮੀਜ ਉਲ ਤਮਾਮ ਹੈ, ਰਜ਼ੂ ਅਲ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਹਰੀਫ ਅਲ ਅਜੀਮ ਹੈ, ਰਜ਼ਾਇਕ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਉਲ ਤਰੰਗ ਹੈ, ਅਭੇਦ ਹੈ, ਅਭੰਗ ਹੈ, ਅਜੀਜ ਉਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਗਨੀ ਮੁਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ, ਨਿਰੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤ੍ਰਮੁਕਤ ਵਿਭੂਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਸੁਜੁਗਤ ਸੁਦਾ ਹੈ, ਸਦੈਵੰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਭੇਦੀ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਸਮਸਤ ਉਪਰਾਜ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਰਬ ਸਾਜ ਹੈ, ਸਮਸਤ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਦੈਵਲ ਅਕਾਮ ਹੈ, ਨਿਰਬਾਧ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਗਾਧ ਹੈ, ਅਨੂਪ ਹੈ, ਓਵੰ ਆਦ ਰੂਪੇ, ਅਨਾਦ ਸਰੂਪੇ, ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ, ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ, ਤ੍ਰਿਵਰਗੰ ਤ੍ਰਿਬਾਦੇ, ਅਗੰਜੇ ਅਗਾਧੇ, ਸੁਭੰ ਸਰਬ ਭਾਗੇ, ਸੁਸਰਭਾ ਅਨੁਰਾਗੇ, ਤ੍ਰਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਛੇਜ ਹੈ, ਅਛੂਤ ਹੈ, ਕਿਨਰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਿਉਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ, ਨਿਰੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਸਦੈਵੰ ਸਦਾ ਹੈ, ਵਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਯੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਨਿਰੁਕਤ ਸਦਾ ਹੈ, ਵਿਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਅਨਉਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਯੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਅਭੰਗ ਹੈ, ਅਨੰਗ ਹੈ, ਅਭੇਖ ਹੈ, ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਪਰਮ ਹੈ, ਅਕਰਮ ਹੈ, ਅਨਾਦ ਹੈ, ਜੁਗਾਦ ਹੈ, ਅਜੈ ਹੈ, ਅਭੈ ਹੈ, ਅਭੂਤ ਹੈ, ਅਤੂਤ ਹੈ, ਅਨਾਸ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੈ, ਅਤੰਦ ਹੈ, ਅਬੰਦ ਹੈ, ਅਭਗਤ ਹੈ, ਵਿਰਕਤ ਹੈ, ਅਨਾਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਨਿਚਿੰਤ ਹੈ, ਸੁਨਿੰਤ ਹੈ, ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਦੇਖ ਹੈ, ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਭੇਖ ਹੈ, ਅਟਾਹ ਹੈ, ਅਗਾਹ ਹੈ, ਅਸੰਭ ਹੈ, ਅਗੰਭ ਹੈ, ਅਨੀਲ ਹੈ, ਅਨਾਦ ਹੈ, ਅਨਿਤ ਹੈ, ਸੁਨਿਤ ਹੈ, ਅਜਾਤ ਹੈ, ਅਜਾਦ ਹੈ, ਚਰਪਟ ਛੰਦ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਰਬੰਹੰਤਾ, ਸਰਬੰਗੰਤਾ, ਸਰਬੰਖਿਆਤਾ, ਸਰਬੰਗਿਆਤਾ, ਸਰਬੰਹਰਤਾ, ਸਰਬੰਕਰਤਾ, ਸਰਬੰਪ੍ਰਾਣੰ, ਸਰਬੰਤ੍ਰਾਣੰ, ਸਰਬੰਕਰਮੰ, ਸਰਬੰਧਰਮੰ, ਸਰਬੰਯੁਕਤਾ, ਸਰਬੰਮੁਕਤਾ, ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਨਮੋ ਨਰਕਨਾਸੇ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ, ਅਨੰਗੰ ਸਰੂਪੇ, ਅਭੰਗੰ ਬਿਭੂਤੇ, ਪ੍ਰਮਾਥੰ ਪ੍ਰਮਾਥੇ, ਸਦਾ ਸਰਬਸਾਥੇ, ਅਗਾਧ ਸਰੂਪੇ, ਨਿਰਬਾਧ ਬਿਭੂਤੇ, ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ, ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ, ਨਿਰਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ, ਸਰਬੰਗੀ ਅਨੂਪੇ, ਨਾ ਪੋਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਸੱਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਤਾ ਹੈ, ਨਿਰਸਾਕੰ ਸਰੀਕ ਹੈ, ਅਮਿਤੋ ਅਮੀਕ ਹੈ, ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਅਜੈ ਹੈ, ਅਜਾ ਹੈ, ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਹਮੇ ਸੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਮਸਤ ਉਲ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਸਨ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰੋਜੀ ਦੇਹੰਦ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜਕ ਰਹਿੰਦ ਹੈ, ਕਰੀਮੁਲ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਗਨੀਮੁਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ, ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਹਰੀਫੁਲ ਸ਼ਿਕਾਨ ਹੈ, ਹੈਰਾਸੁਲ ਫਿਕਨ ਹੈ, ਕਲੰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ, ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਅਗੰਜੁਲ ਗਨੀਮ ਹੈ, ਰਜ਼ਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਸਮਸਤੁਲ ਜੁਬਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਾ ਹੈ, ਕਿ ਨਰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ, ਬਹਿਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬੁਲ ਗਵਨ ਹੈ, ਹਮੇਸੁਲ ਰਵਨ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਉਲ ਤਮੀਜ ਹੈ, ਸਮਸਤੁਲ ਅਜੀਜ ਹੈ, ਪਰਮ ਪਰਮ ਈਸ ਹੈ, ਸਮਸਤੁਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਅਦੇਸੁਲ ਅਲੇਖ ਹੈ, ਹਮੇਸੁਲ ਅਭੇਖ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਲ ਜ਼ਮਾ ਹੈ, ਅਮੀਕੁਲ ਇਮਾ ਹੈ, ਕਰੀਮੁਲ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਜੁਰਤ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਅਚਲੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਸੁਭਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਵਿਭੂਤ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਪਸਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਤਮ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਚਲੰ ਅਨੰਗ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਅਭੰਗ ਹੈ, ਮਧੁਭਾਰ ਸ਼ੰਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮੁਨ ਮਨ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਗੁਣਗਨ ਮੁਦਾਮ, ਅਰਬਰ ਅਗੰਜ, ਹਰ ਨਰ ਪ੍ਰਪੰਜ, ਅਨਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਮੁਨ ਮਨ ਸਲਾਮ, ਹਰ ਨਰ ਅਖੰਡ, ਬਰਨਰ ਅਮੰਡ, ਅਨਭਵ ਅਨਾਸ, ਮੁਨ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਣਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਜਲ ਥਲ ਮੁਦਾਮ, ਆਨ ਸ਼ੇਜ ਅੰਗ, ਆਸਨ ਅਭੰਗ, ਉਪਮਾ ਅਪਾਰ, ਗਤ ਮਿਤ ਉਦਾਰ, ਜਲ ਥਲ ਅਮੰਡ, ਦਿਸ ਵਿਸ ਅਭੰਡ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੰਤ, ਦਿਸ ਵਿਸ ਬੇਅੰਤ, ਅਨਭਵ ਅਨਾਸ, ਧ੍ਰਿਤ ਧਰ ਤੁਰਾਸ, ਆ ਜਾਨ ਬਾਹੋ, ਏਕੈ ਸਦਾ ਹੋ, ਓਅੰਕਾਰ ਆਦ, ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ, ਖਲ ਖੰਡ ਖਿਆਲ, ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ, ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਚਿਤ ਚਰਨ ਨਾਮ, ਅਨਸ਼ੇ ਜੀ ਗਾਤ, ਆ ਜੇ ਜੀ ਨਾ ਬਾਤ, ਅਨ ਝੰਜ ਗਾਤ, ਅਨ ਰੰਜ ਪਾਤ, ਅਨ ਠਟ ਭੰਡਾਰ, ਅਨ ਠਟ ਅਪਾਰ, ਆ ਢੀਠ ਧਰਮ, ਅਤ ਢੀਠ ਕਰਮ, ਅਣ ਬ੍ਰਣ ਅਨੰਤ, ਦਾਤਾ ਮਹੰਤ, ਹਰ ਬੁਲਮਨਾ ਛੰਦ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਰੁਣਾ ਲਹਿ ਅਰਕਾਲਿਆ ਹੈ, ਖਲ ਖੰਡਨ ਹੈ, ਮਹਿਮੰਡਨ ਹੈ, ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਕਲ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਰਬ ਉਭਾਰਨ ਹੈ, ਧ੍ਰਿਤ ਕੇ ਤਰਨ ਹੈ, ਜਗ ਕੇ ਕਰਨ ਹੈ, ਮਨ ਮਾਨਯ ਹੈ, ਜਗ ਜਾਨਯ ਹੈ, ਸਰਬੰਪਰ ਹੈ, ਸਰਬੰਕਰ ਹੈ, ਸਰਪਾਸ ਹੈ, ਸਰਬਨਾਸ਼ ਹੈ, ਕਰੁਣਾ ਕਰ ਹੈ, ਵਿਸਵੰਬਰ ਹੈ, ਸਰਬੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਸ ਹੈ, ਖਲ ਖੰਡਸ ਹੈ, ਪਰਤੇ ਪਰ ਹੈ, ਕਰੁਣਾ ਕਰ ਹੈ, ਅਜਪਾ ਜਪ ਹੈ, ਅਥਪਾ ਥਪ ਹੈ, ਅਕ੍ਰਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਕਰੁਣਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਅਕ੍ਰਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਧਰਣੀ ਧ੍ਰਿਤ ਹੈ,
अमतेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, अकृतात्रित हैं, अमृतामृत हैं, अजबाकृत हैं, अमृतामृत हैं, नरनायक हैं, खालकायक हैं, विश्वम्बर हैं, करुणालय हैं, निरपनायक हैं, सर्वपायक हैं, भव भंजन है, अरिगंजन है, रे प्रतापन है, जाप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस के जस है, भुजंग प्रयात छंद, नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राजसंग काम संग शांत रूपे, नमो परम तत्ंग अतंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो त्यान त्याने, नमो ज्योत ज्योते, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह करता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते, कलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे, अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले, अनंगी अकामे, एक अक्षरी छंद, अजय अलय अपह अभय अबू अजू, अनास अकाश, अगंज अपंज, अलख अपख, अकाल त्याल, अलेख अपेख, अनाम अकाम, अगा अढ़ा, अनाथे प्रमाथे, अजूनी अमूनी, ना रागे ना रंगे, ना रूपे ना रेखे, अकर्मंग अपरमंग, अगंजे अलेखे, भुजंग प्रयात छंद, नमस्तुल प्रणामे, समस्तुल प्रणासे, अगंजुल अनामे, समस्तुल निवासे, निरकामंग बेभूते, समस्तुल स्वरूपे, कुकर्मंग प्रणासी, सुकर्मंग बेभूते, सदा सचदानंद, सतरंग प्रणासी, क्रीमल कुनिंदा, समस्तुल निवासी, अजायब बेभूते, गजायब गनीमे, हरियं करियं करीमुल रहीमे, चत्र चक्रवर्ती, चत्र चक्र भुगते, स्वयं भव शुभं, सर्वदा सर्वजुगते, दुकालं प्रणासी, दयालं स्वरूपे, सदायंग संगे अपंगं विभूते, चत्र चक्रवर्ती, चत्र चक्र भुगते, स्वयं भव शुभं, सर्वदा सर्वजुगते, दुकालं प्रणासी, दयालं स्वरूपे, सदायंग संगे अपंगं विभूते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाह दसवें तुआ प्रसाद सवैये, श्रावक सुध समूह सिधान के, देख फिरे घर जोग जति के, सूर सुरार्दन सुध सुधाधिक, संत समूह अनेक मति के, सारे ही देश को देख रहे हो मत, को न देखियत प्राण पति के, श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते, एक रति बिन एक रति के, माते मतंग जरे जर संग, अनूप उतंग सुरंग सुवारे, कोट तुरंग कुरंग से कूदत, पौन के गौन कौ जात निवारी, भारी पूजान के भूप पली बेद, न्यावत शीस न जात बिचारे, एते पहे तो कहा पहे भूपत, अंत को नंगे ही पाए पधारे, जीत फिर सब देश दिशान को, बांजत ढोल मृदंग नगारे, गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर, हिंसत ही है राज हजारे, भूत भविख पवान के भूपत, कौन गनय नहीं जात बिचारे, श्रीपत श्री भगवान भजे बिन, अंत को अंत के तहम सिधारे, तीर्थ नान दया दम दान, सुसंजम नेम अनेक बसेख है, वेद पुराण कतेब कुरान, जमीन जमान सबान के पेख है, पौन आहार जति जात तार, सब सो विचार हजार क देख है, श्री भगवान भजे बिन भूपत, एक रति बिन एक न लेख है, सुध सिपाह दुरंत दुबाह, सुसाज सनह दुर्जान दलेंगे, भारी गुमान भरे मन में, कर पर्वत पंख हले न हलेंगे, तोर अरीर मरोर मवासन, माते मतंगन मान मलेंगे, श्री पत श्री भगवान कृपा बिन, त्याग जहान निदान चलेंगे, वीर अपार बड़े बरियार, अब चार है सार की तार, पशैया तोरत देश मलिंद मवासन, माते गजान के मान मलैया, गाड़े गड़ान को तोड़न हार, सो बात नहीं चक चार लवैया, साहिब श्री सब को सिर नायक, जाचक अनेक सो एक देवैया, दानव देव सनिंदन साचर, भूत भवैख भवान जपेंगे, जीव जिते जल मैं थल मैं, पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे, पुन प्रतापन बाढ़ जायत धुन, पापन के भव पुंज खपेंगे, साध समूह प्रसन्न फिर जग, सत्र सवय अवलोक चपेंगे, मानव इंद्र गजेंद्र नरातप, जौन त्रिलोक को राज करेंगे, कोट इशनान गजादिक दान, अनेक स्वंबर साज भरेंगे, ब्रह्म महेश्वर बिसन सचिपत, अंत फसे जम फास परेंगे, जे नर श्रीपत के प्रस हैं पाग, ते नर फिर न देह तरेंगे,
कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो बक ध्यान लगायो नाहत फिरियो लिए सात समुद्रन लोक गायो परलोक गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहूं सुन लेहो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरियो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर आवाची दिशा में काहू पशाक उसी सनेवायो को भूतान कौ पूजत है पश को मिरतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को भूतान को पूजत है पश को मिरतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबेउ बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दै मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करिए सब बैरन को आज संग्रिय पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम है शाड कोई आवर ना त्याऊ जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हाथ दै मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है हुजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुज जो करे हवर अच्छा राख लेहो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दस कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिशन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सेव कियो बेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दायत जचन उपजायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रन को पालमो बाद कियो काट काट की अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जब उद करक करा करतारा प्रजा धरत तब दे अपारा जब अकर्क करत हो कब हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्बकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा ताकौ कर पाहन अनुमानत महामूड काश भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह भेव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पहयो राव कही कूपा अंडज जेरज से तज कीनी उत पूज खान बहुर राज दीनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट पहयो संकर इकैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दोष्ट जीते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुज तब सरनी परे तिनके दोष्ट दुखत हवै मरे पुरख जवन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्यै है ताके काल निकट नह आय है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो ताकि ताप तन कमो हरे हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाश वाय सके न कोई
एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा खड़क के तमै शरण तिहारी आप हाथ दै लेहो उबारी सर्ब ठाउर मोहो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता किल बेख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन कोशा करता श्री अस्तो जब पये दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांशत फल पावे सोई दुख न तसै व्यापत कोई अड़ेल सुने गुंग जो जाहे सुरस न पावई सुने मूड चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पाओ निकट न तिन नरके रहै हो जो जाकी एक बार चौपाई को कहै चौपाई संबत सत्रह सहस पण जय अर्ध सहस पुन तीन कही जय भाद्रव सदी अष्टमी रविवारा तीरस्त द्रव ग्रंथ सुधारा सोईया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहे हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तोहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार कौ छाड कै गहो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार सगल द्वार कौ छाड कै गहो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तपाया सहज सेती मन वजियां वाधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईया सब दोता गावह हरि केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सुवारना सबना गला समरत स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नहीं घर तेरा घर ता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सला तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सचे साहिब क्या नहीं घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुरबान कीता गुरु विटहो जिस दियां ए वडियाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वासो कीते काल कंठ कुमारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कहो से नाम हर कै लागे कहे नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे साची लिवै बेन देहिन माणी लिवै बाजहु क्या करे वेचारिया तुद बाज समरथ कोए नाही कृपा कर बनवारिया एस नाओ होर थाओ नाही शब्द लाग सुवारिया कहे नानक लिवै बाजहु क्या करे वेचारिया आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर किरपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदर हो जिन का मोह तुटा तिनका शब्द सचै सुवारिया कहे नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया बाबा जिस तू दे सोई जन पावै पावै ता सो जन दे जिसनु होर क्या करे वेचारिया एक भरम भूले फिरै दह देस एक नाम लाग सुवारिया गुरप्रसादी मन भया निर्मल जिना भाणा पावै कहे नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावै आव हो संत प्यारे हो अकथ की करहै कहानी अकथ केरी कित द्वारै पाईऐ तान मान तान सब सौंप गुर का हुक्म मनै पाई है हुक्म मन्ने हो गुरु केरा गावहु सच्ची बाणी
कहे नानक सुनहु संतो हो कथे हो अकथ कहानी। ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया, चतुराई ना पाया कि न तू सुन मन मेरिया। ए माया मुहुनी जिन एत भरम पुलाया, माया तम मुहुनी किने कीती जिन ठगौड़ी पाईया। कुरबान कीता किसै बिटहो जिन मोह मीठा लाया, कहे नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, एहो कुटुंब तू जे देखदा चलै नाही तेरै नाले। साथ तेरा चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाइयै, ऐसा काम मूले ना कीचै जित अंत पछोताइयै। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरै नाले, कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। आगम अगोचरा तेरा अंत न पाया, अंतु न पाया किने तेरा, अपना आप तू जान है। जी जंत सब खेल तेरा, क्या को आख वखाण आए। आख है ता वेख है सब तू है जिन जगत उपाया, कहे नानक तू सदा आगम है तेरा अंत न पाया। सुर नार मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया। जी जंत सब तुद उपाय एक वेख परसुण आया, लाभ लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया। कहे नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया। भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगता हकेरी। बिखम मार्ग चलना लाभ लोभ अहंकार ताज त्रिशना, बहुत नाही बोलना खन्ने आहो तिखी। वाल हो निकी एत मार्ग जाना, गुरप्रसादी जिनी आप तजिया। हर वासना समाणी कहे नानक चाल भगतां, जुग हो जुग निराली। ज्यों तू चला है तिव चल है स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे। जिव तू चला है तिव चल है, जिना मार्ग पावहे कर किरपा। जिन नाम लाहे से हर हर सदा त्यावाहे, जिसनो कथा सुना है अपनी से गुरुद्वार सुख पावहे। कहे नानक सच्चे साहेब ज्यों पावै तिवै चलावहे। एहो सोहेला सबद सुहावा, सबद सुहावा सदा सोहेला सतगुरु सुनाया। एहो तिन कै मन वसया जिन तुरहों लिखिया आया। एक फिर है कनेरे कर है गल्ला, गल्ली किने ना पाया। कहे नानक सबद सोहेला सतगुरु सुनाया। पवित होए से जना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया। पवित माता पिता कुटुंब सहत स्यों, पवित संगत सबाइया। कहंदे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया। कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया। करमी सहज न उपजै विण सहज जाए, सहसा न जाए नह जाए। सहसा कित संजम रहे कर्म कमाए, सह सह जियो मलीन है कित संजम धोता जाए। मन तो वहो शब्द लाग हो हर सुन रहो चित लाए, कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजय ए सहसा इव जाए। जियो मैले बारोह निर्मल, बारोह निर्मल जियो ता मैले तिनी जन्म जुए हारिया। ए तिशना वड्डा रोग लगा मरण मन होवे सारिया। वेदा मैं नाम उत्तम सो सुन है नाही, फिर है ज्यों बेतालिया। कहे नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया। जियो निर्मल बारोह निर्मल, बारो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी। कूड़ की सोए पहुंचे नाही मनसा सच समाणी। जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारे, कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहै गुरु नाले। जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै, होवै ता सनमुख सिख कोई जियो रहै गुरु नाले। गुर के चरण हिरदय त्याए अंतर आत्मै संभाले। आप छड सदा रहै परणै गुर बिन अवर न जाने कोई। कहे नानक सुनहो संतो हो सो सिख सनमुख होए। जे को गुर ते वे मुख होवै बिन सतगुर मुक्त न पावै, पावै मुक्त न होर थै कोई। पुछहो बबेकियां जाए अनेक जूनी भरम आवै बिन सतगुर मुक्त न पाए।
फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए कहे नानक विचार देखो हो बिन सतगुरु मुक्त न पाए आवह सिख सतगुरु के प्यारे हो गावह सच्ची बाणी बाणी ता गावह गुरु केरी बाणिया सिर बाणी जिन को नदर कर्म होवै हृदय तिना समाणी पीवह अमृत सदा रहो हर रंग जपे हो सारंग पाणी कहे नानक सदा गावह एह सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजा होर कच्ची बाणी कहंदे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी हर हर नित कर है रसना कहया कछु न जानी चित जिन का हिर लिया माया बोलन पै रवाणी कहे नानक सतगुरु बाजा होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा ए हुआ समाओ शब्द सेती मन मिलिया सचे लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ सेव साकत आप उपाय कह करता आपे हुक्म वरताए हुक्म वरताए आप वेखै गुरमुख किसै बुझाए तोड़ै बंधन होवै मुकत शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनु आप करे सो होवै एकस स्यों लेव लाए कहे नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सार न जानी तत्तै सार न जानी गुरु बाजो तत्तै सार न जानी तिहे गुणे संसार भ्रम सुता सुत्या रैण विहाणी गुर कृपा ते से जन जागे जिना हर मन वसया बोलह अमृत बाणी कहे नानक सो तत पाए जिसनो अन दिन हर ले बलाग जागत रैण विहाणी माता के उदर मैं प्रतपाल करे सो क्यों मनहो विसारी है मनहो क्यों विसारी है ए वरदाता जे अगन मैं आहार पहुँचावे उसनों के हो पोहे न सकी जिस नाओ अपनी लेव लावे अपनी लेव आपे लाए गुरमुख सदा संभाली है कहे नानक ए वरदाता सो क्यों मनहो विसारी है जैसी अगन उदर मैं तैसी बाहर माया माया अगन सब इको जेही करता खेल रचाया जा तिस भाणा ता जमया परवार भला पाया लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरै मोह उपजै भाव दूजा लाया कहे नानक गुर प्रसादी जिना लेव लागी तिने विचे माया पाया हर आप अमूलक है मुल न पाया जाए मुल न पाया जाए किसै विट हो रहे लोक विल लाए ऐसा सतगुरु जी मिले तिसनु सिर सौंपीऐ विचहु आप जाए जिसदा जियो तिस मिल रहा है हर वसै मन आए हर आप अमूलक है भाग तिना के नानका जिन हर पल्लै पाए हर रास मेरी मन बण जारा हर रास मेरी मन बण जारा सतगुरु ते रास जानी हर हर नित जपे हो जी हो लाहा खटे हो दिहाड़ी एहो तन तिना मिलिया जिन हर आपे भाणा कहे नानक हर रास मेरी मन होआ बण जारा ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास न जाए प्यास न जाए होरत कितै जिचर हर रस पल्लै न पाए हर रस पाए पल्लै पीए हर रस बहुड़न तृष्णा लागै आए एहो हर रस करमी पाई है सतगुर मिलै जिस आए कहे नानक होर अनरस सब विसरे जा हर वसै मन आए ए शरीरा मेरेया हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग मह आया हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मह आया हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाय जगत दिखाया गुरप्रसादी बुझिया ता चलत होआ चलत नदरी आया कहे नानक सृष्ट का मूल रचिया जो तराखी ता तू जग मह आया मन चाओ भया प्रभ आगम सुनया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनया हर गाओ मंगल नित सखिए
सोग दुख ना व्यापय, गुर चरण लागे दिन सुभागे, अपना पिर जापय अनहत बाणी, गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भूगो, कह नानक प्रभ आप मिलिया करण कारण जोगो, ये शरीरा मेरिया इस जग मैं आए कह क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग मह आया, जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया, कह नानक ए शरीर परवान हुआ जिन सतगुर स्यों चित लाया, ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मैं ज्योत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर निहालिया ए विस संसार तुम देख दे, इहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया, गुरप्रसादी बुझिया जावेखा हर एको है, हर बिन अवर ना कोई, कह नानक ए नेत्र अंध से सतगुर मिले देव दृष्ट होई, ए सरवण हो मेरे हो सचै सुनणै नो पठाए, सचै सुनणै नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस समाणी सच अलख वेडाणी, ताकी गत कही न जाए, कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो वो सचै सुनणै नू पठाए, हार जियो गुफा अंदर राखो कह वाजा पवन वजाया, वजाया वाजा पाउण नौ द्वारे प्रगट किए, दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए भावनी, इक ना दसवां द्वार दिखाया, तह अनेक रूप नाउ नवनित तिसदा अंत न जाई पाया, कह नानक हर प्यारै जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया, इहो साचा सुहेला साचै घर गावहु, गावहु ता सुहेला घर साचै, जिथे सदा सच ते आवहे सचो ते आवै जा तुद पावै, गुरमुख जिना बुझावहे, एहो सच सबना का खसम है जिस बखसे सो जन पावहे, कहे नानक सच सोहेला सचै कर गावहे।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासा होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाओ सिमरओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नौ निद आवै ताए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होवो जी सहाय। दसाही पातशाहियां दी जाग दी जोत बाणी के बोहेथ चवर ताकत शत्र दे मालक सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां ने तेरा नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाईयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चिराए गुरुद्वारां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी सिदक केसां सवासा संग निभाया तिन्हां सिंघां सिंघणियां भुचंगी बच्चियां दी नाम दी कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरू। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरू। प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू नाम चित आवै नाम चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां गुरु खालसा जी साहेब तहां तहां रक्षा रियाय तदेग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा

दान प्रोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी दे पवित्र दर्शने इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बुलाओ जी। वाहिगुरु सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दे राखे आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जियो। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हां तों सिख पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो जी। हे निमाणिया दे माण सतगुरु निताणिया दे ताण ने ओटियां दी ओट ने आसरियां दे आसरा सच्चे पिता धन सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज गुरु पिता गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज गुरु गद्दी ते विराजमान दसाही पातशाहियां दी जागदी जोत धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। आप जियां का कोटान कोट धन्नवाद शुक्र है पातशाह जी। अमृत वेले तो पावन तख्तां ते प्रकाशमान हो करके खुले दर्शन दीदार बख्श रहे हो महाराज जी। आप जिया की पावन टहल सेवा करदियां होईयां बेअंत भुलां की खिमा कर देनी सतगुरु जी अगे तो सुमत बख्शिश करनी। आप जिया के पावन अस्थान सिख गुरद्वारा सनहोजे विखे महाराज जी अमृत वेले दे दीवान सजाए गए। सजे दीवाना दे विच संपूर्ण श्री सुखमणी साहब जी के पाठ होए उपरंत नितनेम दीयां पंज बाणियां दे पाठ होए महाराज जी। बाणी पढ़दियां सुनदियां सेवा करदियां विचरदियां होईयां बेअंत भुलां की खिमा कर देनी। बाणी सोध के सचखंड दर प्रवान कर लैनी बाणी दा भाव दर आई संगत दे हिरदियां ते वसाउणा महाराज जी। बाणी अनुसार जीवन बख्शिश करना काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो बचाउणा सिखी सिदक केसा स्वासा संग निभाउणा महाराज जी। दर आई संगत दी तिल फुल भेटा प्रवान करनी सब दी हाजरी लेखे लाओ दरों करों सिखी सिदक भरोसा नाम दियां दातां तंदुरुस्ती दियां दातां बख्शिश करनियां परिवारां दे विच नाम दा प्रगास करना दुखां दा नाश करना बच्चियां नूं बाणी अते बाणी दे नाल जोड़ना कारोबारां च वाधे पाउणे महाराज जी अपने चरणां दा प्यार बख्शिश करना दर घर दे टहलियां नूं महाराज चढ़दी कला बख्शिश करनी भै भावनी सदका अपनी सेवा करन दे लाहे प्रदान करने महाराज जी। शुक्र है चार पैर रहन सुख दी बतीत कीती सतगुरु जी आया चार पैर दिन अपनी याद विच सुख दे नाल बतीत करवाउणा सरबत्र संगत दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना महाराज जी मेहर भरिया हथ रखना। सतगुरु जी आप जी ने बख्शियां होईयां दातां विचों कड़ा प्रसादी देग हाजर है आप जी कृपालता करके भोग लाओ जी। भोग लगा शीत प्रसाद साध संगत दे रसनी लायक होवे जो छके सो आप जियां दा नाम जपे जिन्हां भंडारां चों रस्तां बस्तां हाजिर होईयां भंडारे भरपूर करने काल कंटक चूर करने रस्तां दरगाहों भेजणियां जो संगतां घरां दे विच बैठ के महाराज जी मीडिया दे राहीं आप जियां दी याद विच जुड़ियां ने तिन्हां दी अरदास सभनां दा भला करना मेहर भरिया हथ रखना करो कृपा। पावन पवित्र हुक्मनामे बख्शिश करके अगले दीवान सजाउण दी आग्या बख्शिश करो जी। सही गुरमुख प्यारे मेलो जिन्हां मिलिया आप जियां का

0: क्यों करते हैं कुछ
1: डेविल है ना, मतलब ही नहीं ना
0: शुक्र
1: ऐसे मैं सोच रहा हूँ यार बहुत मुश्किल हो जाएगी, लेकिन मैं डेविल आ रहा है उसमें एडिट करने

चक्की चक्कल वारोले बहुतन लाटू मधाणियान गा पंखी पौंदियां लैन नसा सुए झड़ पवाए जंत नानक पौंदिया गणपनांत बंधन बंद पवाए सोए पै कृतन तै सब कोए नच नच हंसे चले सिर उड़ना।

पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरी है साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डिये खात पड़ी है जेते बरस बरस पड़ी है जेते मास पड़ी है जेती आरजा पड़ी है जेते सास नानक लिख है एक गल और हो मैं चखना चाक महला पहला।

0: ज्ञान का बढ़ा मन रहे, गुर बिन ज्ञान न हो।
1: बड़ी बड़ा हुआ गुनेगार तो हमें साधना मारी है, जेह काले करना तबे हो ना उपचारी है, ऐसी कला ना केड़ी जिधर के गया हारी है, पढ़िया तुम तो विचार के विचारी है, मुंह चले सो के मारिए, मुंह चले सो के मारिए।

0: जित हरिया सब कोए सुत क्यों कर रखी है सुत पवे रसोए नानक सुत केव न उतर ज्ञान उतारे तोहे महला पहला
1: मन का सुतक लोभ है जेवा सुतक कूड़ अखी सुतक वेखना पर त्रै परतन रूप कन्नी सुतक कन पहला अदबारी खाए नानक सा आदमी बंदे जमपुर जाए सबो सूतक परम है दूजा लगे जाए जमन मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र संभाए नानक जिनी गुरमुख बूझिया तिना सूतक ना है।

हर बिंद कर हर कर्म सर्वन हर कथा हर दरगह नानक ऊजल मथा। वाहे गुरु राग सोरठ वाणी भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जब हम होते तब तू नहीं अब तू ही

मैं उदत जल के वल जल मही माधवे क्या कहिए परमय सा जैसा मानीय होए ना तैसा रहाओ। नरपत एक सिंहासन सोया सुपने भया पिखारी अच्युत राज बिछरत दुख पाया सोगत पई हमारी राज पोए अंग प्रसंग जैसे हैं अब कछ मर्म जनाया अनक कटक जैसे भूल परे अब कहते कहन न आया।

0: अनल अगम जैसे लहर मैं ओ दद जल केवल जल माही। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: परम सन्मान्यो गुरु रूप साध संग जी, आप जी वडभागी हो जो अमृत वेले तो प्रारंभ हुए गुरु दरबारां दी हाजरी शरदा भावना सहित भर रहे हो। बहुत ही प्यार दे नाल आप जिया ने अमृतमई बाणी दे कीर्तन आसा की वार दे कीर्तन सरवण कीते, उपरंत अज दे श्री मुख वाक दी कथा सत्कारयो ज्ञानी जसबीर सिंह जी खुश दिल तिना पासों आप जी ने सरवण कीती, उपरंत अरदास विच आप जी ने हाजरियां भरियां श्री मुख वाक सरवण कीते। समूह संगत दा धन्नवाद। बेनती है कि कल 1 अक्तूबर नूं धन धन गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी का गुरियाई दिवस है, सो आप जी ने ध्यान विच रखना हाजरियां भरनिया। विशेष कीर्तन हाजरी भी होएगी 10 तो 11 बजे तक। अक्तूबर 5 नूं ज्योति जोत दिवस है धन धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का। 9 अक्तूबर नूं शहीदी भाई सुखदेव सिंह जी सुखा ते भाई हरजिंदर सिंह जी जिंदा दी। 10 अक्तूबर नूं भाई साहब भाई तारू सिंह जी का जन्म दिहाड़ा आ रहा जी। उपरंत 23 अक्तूबर नूं धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी का जन्म दिहाड़ा है। 27 अक्तूबर नूं साहिब सतगुरु धन धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का प्रकाश दिहाड़ा है। बड़ी चढ़दी कला दे नाल ये सारे पुरब जिहड़े ने मनाए जाणगे, सो आप जीआं दे चरणां विच सनिमर बेनती है कि वह चढ़ के हाजरियां भर के गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करो जी। आ हुण जो समुची मानवता दे भले वास्ते श्री सहज पाठ आपां लंबे समय तो कर रहे हां, संगतां घरां विच बैठ के भी लाहे प्राप्त करदियां हन, पावन पवित्र अमृत बाणी दे श्री सहज पाठ होणगे, आप जीआं ने हाजरियां भरनियां। भुला चुका दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

तिस बिन घड़ी नहीं जग जीवा, ऐसी प्यास तिसाई रहाऊ। सरवर कमल किरण आकाशी, बिकसै सहज सुपाई।

ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे। कहते हैं ऐसे गुरु को सानू बलहार जाना चाहिए है जिसनु नारायण नरपत नमस्कार। सारा ब्रह्मंड उसनु नमस्कार करता है, उसनु पूजता है, उसका ध्यान करता है। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह अपने इस पावन शब्द राही सानू समझाना करते हैं कि भाई जी की बिरथा होए सो गुरु पहे अरदास कर। जद भी कोई गल हो तेरे मन के अंदर तू गुरु दे कोल आके बैठ के उस अगे अरदास करनी है। वो इना समर्थ है कि तेरे मन की बुझ के ते मन की पूरी भी कर देगा। ऐसे गुरु तू अपन बलखार जाना चाहिए आप मुक्त मोहिता।

मन नूं जे कोई सुकून शांति दे सकदा है वो महाराज दा नाम है। और ऐसी कोई पावर नहीं, ना पैसा, ना पदार्थ, ना धन दौलत, ना शोहरत जे तेरे अंदर कोई चैन ते टिका बख्शिश कर सकता है वो सतगुरां दा नाम है। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे। महाराज कह रहे ने तेरी आत्मा दी, तेरे जी जी जी दी जिहो जी भी इच्छा हो, रब ना करे कदे कोई औखा समा भी हो ता भी अरदास कर। अक्सर लोकी दुखां विच ही अरदास कर रहे हैं, सुखां विच ते सतगुरु कह रहे ने दुख तदे जा विसर जाए। दुख ता आउंदे ने जदों तू उन्हों भुल जाता है। वड्डियां वड्डियां खुशियां विच फिर आपां शुकराना भुल जांदे हैं। ऐसे ऐसे परिवार भी मौजूद ने, अपनी बेटी दी मैरिज है, व्याह है, पर प्यो सारी पार्टियां सारे रिश्तेदार छड़ के अपना नेम निभाने चले जाता है। सारे रिश्तेदार कहंदे ने किथे चलिया गया, ते जिहड़े जाणदे सन ओह कहंदे ने भी दुनिया इधर दी इधर हो जाए उन्ने नेम नहीं छड़ना। अपनी बेटी दा व्याह है पर नेम कुछ समय लई मिलन वास्ते अपना नेम निभाउण चले गए। जदों आए ते पुछया तुसी किथे चले गए सी, ते फिर हाथ जोड़ के नीवी पा के कह दिता जिसने ये खुशियां दित्तियां उहदा शुकर करन गया, जिन्ने ये विध बनाई उहदा शुकर करन गया सी। सतगुरु कह रहे ने कल्ला खुशियां दा मौका ही नहीं, कल्ले पदार्थ ही नहीं, मन नूं भी ऐसी बख्शिश मिलती है इंज लगदा है वी तू ही बादशाह है, तेरे नालों सुखी कोई नहीं, तेरे वर्गा कोई होर नहीं। जिहड़ा सबर चैन तेनू मालक ने दिता वो किसी होर कोल नहीं। एक बारी पावन पंक्तियां कह दिओ सारे, मिलदा पता कित्थों है। सो लगा सतगुर सेव जाको करम तुर, जिन्हां दे कर्मां विच लिखिया होया है सतगुरां दी सेवा, सतगुरां दे बचनां नूं जिंदगी विच कमाउणा।